हर दिन हर वार शनिवार एतवार वी डोंट प्रे फॉर लव वी जस्ट प्रे फॉर कार्स।

0: मीनल जी, तो शो पता कि आजकल थिएटर मुतलक कद बात करा।
1: बिल्कुल रमेश जी, अच्छी आसान जो सानन सामिनन तान गसी थिएटर च पूर पूर जानकारी बात जन।
0: बिल्कुल जानकारी दिता सीमन तो बे तिदिम होक जानकारी दपान कुनुशत सतवंधास मंज आये अभिनव भारतीय थिएटर ग्रुपस मंज मोतीलाल किम्मू ड्रामान हिंद अंबार पेश करद। अथ मंज आये के खास ड्रामा निगारन हिंद ड्रामा पेश करद। यमो मंज मशहूर अस उपेंद्र नाथ अश्क, रविंद्र नाथ टैगोर, गिरीश कर्नाड, बंसी निर्दोष, मोतीलाल किम्मू तो पुष्कर नाथ भान सिंह ड्रामा। अमे अलाव आये हरीश चंद्र तारामती, शिव लगन, फिरथुर, मंजिल निक, आकाश पाताल, हीरो मचाम वगैरह करने।
1: अभिनव भारतीय मंज के शख्सियत यमो पन अक मुकाम बनो तिमो मंज अस डॉक्टर रतन लाल शांत, डॉक्टर गौरी शंकर रैना, रविशंकर केमू, सूरज रैना, अशोक कल्ला, नंसी गंजू, हीरा लाल राजदान, रियाज रफाई, जमन लाल हक्कू, त्रिलोकीनाथ वैष्णवी, सोहन लाल कौल वगैरह। किमो मंस रविशंकर केमू, सोहन लाल कौल, डॉक्टर गौरी शंकर रैना, सूरज रैना ची वन कुन नत कुन तरीका अ थिएटर से जुड़े। अमे अलावा ची के अमेजर ड्रामा क्लब यमन मंस रंगमंच, संगरमाल, वसंत थिएटर वगैरह शामिल छे। कश्मीर ड्रामा हस मूल टाइम वक्त ते पोचर ये ले मोतीलाल के मोहन लुक थिएटर ग्रुप या यत बांड पत्थर तवनांचे सुइत वाबस्तगी थव। खास तौर पर टे कश्मीर भगत थिएटर अकिन गाम ये ले के मुसबनी मन सिद तकदीर हवस जोल गयम ते कोले गयम कांगे ही ड्रामा टैगोर हालस मंस पेश कर।
0: कश्मीर ड्रामा हस मूल अके नव तरीकों को पोचर बने अख ड्रामा फेडरेशन तम हर वर्य ड्रामा फेस्टिवल करान यमिक ड्रामा कुनुशत शीतस पांशीतस ताम कशीर मंज जिंद रूद। रंगमंच वारिया कलाकार युद नाव हैन बगर रोजी ये इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट तो तम गई मखनलाल सराफ, बिहारी काक, बंसी मट्टू, अशोक जालपुरी, शादीलाल कौल, आशा जारू, भारती जारू वगैरह यमो थिएटर आज तान जिंद तो मुझो। तो मीनल जी यस ड्रामा तो थिएटरस मतलब जानकारी यस ऐसे पन्न सामिनन तान वात रहो।
1: बिल्कुल रमेश जी, तो ऐसे उम्मीद जे तिमन ते ऐसे पसंद आमुत इस के प्रोग्राम तो हम तिमन इजाजत।
0: बिल्कुल, मगर छुना सला नेरा नेरन भोजन हो अखबार।

बड़ा के शैल बड़ा के मिठा गीत सुनिए नंद गया आप ते अस गल करा दे हे जम्मू प्रदेश दी ते मैं आ तुंदी आरजे नेहा शर्मा ते जदों राजे ने दिखिया ते उन्हें फिर उस जगह ही बसाने दा निर्णय ले लेता। उस राजे दा नाम है राजा जी जम्बू लोचन ते उन्हें राजे दे नाम पर इस जुग्गर प्रदेश दा नाम पिया जम्बू, पर उन सरल भाषा च जम्बू बोलते बोलते जम्मू के हुई गया। ते कनेही लगी तुसी कहानी? ये जिहड़ी कहानी है एक दंत कथाएं च एक है जिहड़े साढ़े वड्डे बजुर्ग असीं सुनांदे ने, असीं सुनी दी है अपने जम्मू प्रदेश दे नां दे पिछे दा महत्व। ते इसी कहानी दा प्रभावित होइए मैं ये अपनी कविता भी लिखी ही। सच च गे इसी मंदरे दा थां रखदे ने, इत्थे बड़ी बड़ी चमत्कारी जगावां ने, उंदे बड़े बड़े महत्व ने, ते बड़े गी इत्थे लोग जेड़े ने बड़े मिलनसार न, बड़े मेल भाव कन्ने रोंदे ने। ये जिहड़ा शेर ते बकरी दा उदाहरण है वो अज भी कुते ना कुते मेरे डुग्गर प्रदेश च विद्यमान है। लोग बिना द्वेष भाव दे रोंदे ने, कोई कुसै भी तरह दा भेदभाव नहीं करदे ने, बड़े गे प्रेम कन्ने रोंदे ने। ते मैं प्रार्थना करनी आ ये प्रेम सदा इन्हें सारे लोकें च बने दागे रवे। ते तुस सुनो आज दे एपिसोड दा अगला गीत।

0: Imagine having a Muskoka getaway that works for you, even when you're not there. Discover a rare opportunity at an exclusive open house in Huntsville, where peaceful surroundings, year-round enjoyment, and endless outdoor adventures meet proven investment potential. This exceptional property offers 3 bedrooms, modern finishes, and lake access nearby. Curious to learn more? Visit the open house Saturday, July 25th from 1 till 3, or contact Jay Gundam, RE/MAX Gold Realty, Inc. at 416-265-2222.
1: कमाल दा कैसे यार यकीन ही नहीं होता
2: तेनू इधर तो यकीन नहीं होता तू ए सुन सेव ऑन एनर्जी वाले फ्री इलेक्ट्रिक हीट पंप ते रहने जे तुहाडे घर विच इलेक्ट्रिक जा ऑयल हीटिंग है
1: इस गल ते मेनू पूरा यकीन है ओते इंस्टॉलेशन दा 100% खर्चा भी आप देंदे ने ते जे तुहाडे घर विच ऑयल हीटिंग है ते ओ ऑयल टैंक भी फ्री च बार कर देंगे नाले हीट पंप तुहाडे हीटिंग बिल्स 50% तक घटा सकदे ने
2: ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ
1: ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਲਗਵਾਇਆ ਹੈ
2: ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ
1: save on energy.ca/EAP

0: ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ
1: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ,
0: ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ,
1: ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ,
0: ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ,
1: ਚੌੜੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਨੂੰ,
0: ਚਰਖਾ ਕੱਤਦੀਆਂ ਤੇ ਪੀਂਘਾਂ ਝੂਟਦੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ,
1: ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਭੰਗੜੇ ਅਤੇ ਗਿੱਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ,
0: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ
1: ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ।
2: मिलना इवेंट्स लेके आ रहे ने तुहाटे वास्ते रू का सफर टूर। जी हाँ, लाइव मास्टर सलीम कॉन्सर्ट इन टोरंटो 24 जुलाई नू मिसिसागा कन्वेंशन सेंटर दे विच। एक ऐसी ही शाम जो छू लेगी तुहाडी रूह नू।
3: मैं के अचन जी सलाम कहने
2: दिला नू टुंबन वाले मास्टर सलीम दे सूफियाना तरान ने अते हाई एनर्जी पंगड़ा बीट्स गूंजन गे 24 जुलाई नू। तारीख नोट कर लो, 24 जुलाई। अपनी टिकटां अज ही बुक करो। लॉग ऑन करो www.milnatickets.com ते। स्पॉन्सरशिप अते होर किसी भी जानकारी लई तुसी रोहन शर्मा नू कॉल कर सकते हो 6477839873। बस रेडी हो जाओ नचण गाउण ते चूमण दे लई। सुरां दे बादशाह मास्टर सलीम दे नाल।

0: बैरीकेट ला के पैरामिलिट्री फोर्स ला के रोक दिते जाते हैं। फिर करीब करीब 8 साढ़े 8 जदों भारतीय समय के बजते हैं, दिन चढ़ता है, जंतर मंतर विखे जरा सद्दा दिता सी कांग्रेस जनता पार्टी ने, उन्हां दे समर्थक इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। ते 9:30-10 बजे उथों एक मार्च शुरू हुंदा है जंतर मंतर तों। पहला तो जिहड़े नाल ही बैरीकेट लगे सी उत्थे तोड़ दिते जाते हैं, उत्थे झड़प हुंदी है, परंतु वह बैरीकेटां दे उपर विद्यार्थी वर्ग कांग्रेस जनता पार्टी ते उहदे समर्थक भारी पै जांदे आ। जदों भोरा को अगे नूं वधदे आ ते उस वेले तक 11 बज चुके सी, ते 11:30 जिहनूं असीं पार्लीमेंट स्ट्रीट आख सकते हाँ, उत्थे फिर तनाव वाले माहौल बन गए। हुण पुलिस दे कोल ते इक्को एक ढंग सी, जां उहनां विद्यार्थियां नूं रोक के ते जां उह विद्यार्थी पार्लीमेंट दे गेट तक पहुंचणगे, ते फिर उही कुछ कीता जो पुलिस फोर्सां करिया करदियां। उन्होंने अथरू गैस के गोले भी सुट्टे, लाठी चार्ज भी किया, जो ताकत की वरतों हो सकती सी कीती। फिर 2 घंटे की कशमकश के बाद जिहड़ा विद्यार्थी पछाण मुड़े, इहदे दौरान प्रभ संधू जी एक बैठक निकलती है, वह बैठक निकलती है जगत प्रकाश नड्डा जी जिहड़े केंद्रीय मंत्री उन्हां दे नाल कांग्रेस जनता पार्टी के बुलारियां दी। हुण वह बैठक विच की होया अजे तक खुल के खबर बाहर नहीं। बैठकों भारतीय समय के करीब करीब दोपहर 12-1 बजे हुई। उस बैठक में पता यह लगा है कि 2-3 मुख्य मंगा जिहड़ियां कांग्रेस जनता पार्टी ने रखियां, सोनम वांगचुक ने रखियां, जां इन्हां दे बुलारियां ने, एक वो कहिंदे कि भाई सरकार सिक्ख्या व्यवस्था नूं ठीक करे, जिहड़े पेपर लीक होए उहदी जिम्मेवारी चुके, और संसद दे विच इह मुद्दिआं नूं चुकिया जावे। हुण गल है, गलत दुरुस्त है, परंतु एक मंग जिहड़ी पहले दिन तो कि धर्मेंद्र प्रधान का अस्तीफा, जिहड़ा भारत का केंद्रीय सिक्ख्या मंत्री है, वह अजे तक प्रभ संधु जी गल बाहर नहीं आ रही। लगता कि किते ना किते इत्थे समझौतावादी कुछ गल सामने आ गई है, धर्मेंद्र प्रधान का अस्तीफे वाली गल विच ही रह गई है। हुण इह ते गल कीती मैं दुपहर भारतीय समय की, दुपहर 1:30-2 बजे तक। उस तो बाद फिर हुण पता यह लग रहा जिहड़ियां ताज़ा तरीन खबरां ने, एक तो कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक जिहड़े अभिजीत दिपके ने, जदों सोनम वांगचुक नूं पुलिस चुक के लैके जांदी उह भुख हड़ताल ते बह गए सी, उन्होंने अज भुख हड़ताल तोड़ दित्ती है। वह उन्होंने तोड़ी है सोनम वांगचुक की अपील ते। सोनम वांगचुक कहिंदा कि भाई तुसीं लीड करना अंदोलन नूं, भुख हड़ताल मैं रखी है, चाहे हस्पताल च मैं बैठा हाँ, तुहाडी एनर्जी की जरूरत है, तुहाडी शरीरक ताकत की जरूरत है, इस करके तुसीं भुख हड़ताल खत्म करो। अभिजीत दिपके ने अपनी भुख हड़ताल खत्म कर दिती है। जिहड़ियां 2-3 कुड़ियां होर आल इंडिया स्टूडेंट एसोसीएशन दियां भुख हड़ताल ते बैठियां सी, उन्हां ने भी अपनी एसोसीएशन ते कहण ते भुख हड़ताल खत्म कर दिती है। उस तो बाद जिहड़े हुण पिछले 1-1.5 घंटे दियां खबरां ने, जंतर मंत्र जिहड़ा इन्हां दा पंडाल लगा सी, जंतर मंत्र जिथे इन्हां ने मोर्चा लाया सी, पुलिस ने वह सारा कुछ खिलार दिता है, वह थां नूं अपने कंट्रोल च लै लिया, ते जिहड़े उत्थे प्रदर्शनकारी सी कुछ नूं गिरफ्तार कर लिया, ते कुछ नूं खदेड़ दिता, भाव कि परे पूरे धक्क दिते, किसी ते लाठियां मार के, किसी ते होर ढंग दा ताकत की वरतों करके, भाव कि कांग्रेस जनता पार्टी का प्रदर्शन जिहड़ा उन्होंने कहा सी कि असीं रोस मार्च करना है संसद भवन वाले पासे, भावां कि जतन किया, परंतु उस जतन दे विच इन्ना क कामयाब जरूर होया है कि उन्होंने सरकार के कन्नां तक अपनी आवाज भेज दी है, लोग उत्थे इकट्ठे हुए हैं, तो लोगों ने प्रदर्शन जरूर शुरू किया, परंतु संसद भवन के गेटा तक नहीं पहुंच सके। दूजे पासे पुलिस ने ताकत की वरतों करके उन्हों का जिहड़ा चल रहा लगातार प्रदर्शन है उन्होंने खदेड़ दिता है, जंतर मंत्र वो थान पुलिस के कंट्रोल में है, उत्थे हुण कोई आगू नहीं नजर आ रहा। इहदे दौरान एक खबर यह भी सामने आई है कि अभिजीत दिपके जिहड़ा कांग्रेस जनता पार्टी का मुखी है, उसकी गिरफ्तारी दी भी खबर ने कि उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया, हालांकि अधिकारत कोई पुष्टि नहीं। सो रौले रप्पे चल रहे हैं, रौले रप्पिया च एक गल बड़ी साफ है कि कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन से खास करके जंतर मंत्र विखे लगे पक्के मोर्चे से दिल्ली पुलिस भारी पै चुकी है, तो वह थान इस वेले दिल्ली पुलिस के कंट्रोल में है, कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थक उतों इधर उधर किए जा चुके हैं।
1: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਕੂਨ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਲਿਵਾਨਾ ਵੈਲਨੈਸ ਸਪਾ।

0: रात आ मैं छड़ दिनी आ पर जनाब चले किथे हो
1: मैं चलिया स्काईडम ऑटो एंड बॉडी सेंटर जेडे करदे ने मेरी कार दी केयर बेस्ट सर्विस ते फुल रिपेयर
0: ए होई हन स्काईडम ग्रुप ऑफ कंपनीज जेना दिया जीटीए दे विच चार लोकेशन ने मेरी फ्रेंड अनु दी एक्सीडेंटल कार भी फिक्स करके नवी बनाती सी
1: जी हां कारा दे नाल नाल बसा अते वड्डे ट्रकां दी हर तरह दी रिपेयर अते बॉडी वर्क दा काम भी कीता जांदा है रेट वास्ते बेस्ट पैकेज प्रोवाइड कीते जांदे ने वधेरी जानकारी लई कॉल करो 905-874-9878
2: Nobel Prize Food, Nobel Prize Food.

0: एंड सर्टिफाइड हेल्थ इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट फ्रॉम टॉप चॉइस इंश्योरेंस एजेंट्स।
1: ए टू जी किचन कैबिनेट, भाई वाह क्या किचन कैबिनेट तैयार कर रहे हैं। लक्की भाजी दियां बनियां किचन कैबिनेट देख के गुआंढी भी बहाने नाल तुहाडे घरे आउंदे हन। शीशे नाल भरियां किचन कैबिनेट वास्ते, डिजाइनर किचन कैबिनेट वास्ते ए टू जी किचन कैबिनेट 416-720-7073 905-720-7073 ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

0: फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेज या रीफाइनेंस करवाना चाहते हो तब तो सीधे अपनी गड्डी मोड़ो 1200 डेरी रोड ईस्ट यूनिट 22 मिसिसागा 416-804-2015 416-804-2015
1: You're listening to Punjabi Versa, Monday to Friday, 11 a.m. to 12 p.m. For more information, call 647-448-1000. Toronto's number one station, AM 530. Punjabi Versa!

कैसी अंदाज है, इश्क दी गली विचो कोई कोई लंघदा, खाली दिल नहीं मंगदा, ये जान ही मंगदा। कई बंदे कम्मा दे बिजी हो गए, कहते नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो टाइम नहीं है।

0: IPL चल रहा है only on Karo Stream. Watch successful IPL season only on Karo Stream. www.karostream.com or call 905-204-1313.
1: A1 केक्स एंड पेस्ट्रीज 1997 तो थोड़ी सेवा करता आ रहा है. केक्स पेस्ट्रीज मिठाइयां समोसे दे पार्टी डेकोरेशन भी ले सकते हो. नकल करके केक्स अते पेस्ट्रीज बेचन वाले तो बचो ते जसपाल नागरा नु फोन करो. A1 के तुम गालिए
2: नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे. आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज.
3: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129. 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा. कॉल 905-460-8888. दैट्स 905-460-8888.
2: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ.
4: यार इना इंश्योरेंस ने ते तू कढ़ाता वधिया ते जायज रेट कित्थों मिलेगा.
5: टॉप फाइनेंशियल इंक तो जो अपनिया बेहतर ते भरोसेमंद सेवावां लई जाने जांदे ने.
6: क्रिटिकल मॉर्गेज RESP RRSP विजिटर इंश्योरेंस सुपरवीजा स्पेशल डिसेबिलिटी प्लान फॉर ट्रकर्स. जे थोड़े कोल 20 नालों ज्यादा ड्राइवर ने ता थानू अनबीटेबल प्राइस लेके देंगे.
5: कॉल करो 20 सालां दे तजुर्बे वाले सुरजीत सिंह पड्डा जी नू 647-300-3100
6: या मिलो 70 डेल्टा पार्क बुलेवार्ड यूनिट 11 ब्रैम्पटन. जब HK मूवर्स का हो साथ लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए टेंशन लेने की नहीं है बात. HK मूवर्स होम ऑफिस अपार्टमेंट्स एंड डिलीवरी बिग और स्मॉल वी मूव इट ऑल. वी आल्सो शिप कार्स वी आल्सो डू स्टोरेज. 30 इयर्स एक्सपीरियंस वी सर्व विद अ स्माइल. HK मूवर्स गिव अस अ कॉल. मिस्टर हरमिंदर 416-524-6704
7: हैसल फ्री मूविंग के लिए HK मूवर.
8: HK मूवर्स ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ. ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕੈਲਗਰੀ ਖੜੀਆਂ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਖੜੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਖੜੀਆਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਨੇਪੈਗ ਖੜੀਆਂ, ਜਾਂ ਆਟਵਾ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਚੁਕਾਉਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨੰਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਆ 416-524-6604. ਆਪ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਦਿਹਾੜੀ ਬੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਓ ਗੱਡੀ 'ਚ 2-400-500 ਦੇ ਕੇ ਗੱਡੀ

0: शेर तो बहुत हो गया, लेकिन एक आध शेर मैं रिदम के साथ भी गा देता हूँ, दिक्कत के साथ।
1: किसी को अपना बना ले किसी पे।
2: ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਇਲਟ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ
3: ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਹੀ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਉਹ ESA ਪਰਮਿਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ hirelicense.ca ਤੇ ਜਾਓ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸੇਫਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ।
4: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
5: हेलो कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल।
6: हां जी कटारिया टूर एंड ट्रैवल।
5: इंडिया दी टिकटा चाहिदियां सी।
6: ओ इंडिया की तुसी जित्थों मर्जी दी टिकटा ले लो। इंडिया किथे जाना?
5: चार टिकटा दिल्ली दी ते दो अमृतसर दी मिल जानगी?
6: मिल जानगियां, बिल्कुल मिल जानगियां। दिल्ली मुंबई अमृतसर एहो ता साडी स्पेशलिटी है। बस दसो की टिकटा कदों दी चाहिदियां ने। ते हां स्पेशल टूर पैकेजेस ते हनीमून पैकेजेस भी साडे कोल अवेलेबल ने।
5: भरोसेमंद सर्विस ते सब तो वधिया रेट्स लई इक्को इक ना कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल। बुकिंग लई अज ही कॉल करो 905-678-1200 Kataria Tours and Travel
7: 32-55-80 98
5: गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो?
7: काउंटिंग नहीं, ए ते 32-55-80 ते 98 इंच दे टीवी ने जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने। इन गोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलेंगे, हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते। 32-98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने।
5: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी। कॉल 905-450-2828 905-450-2828।

समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दियां सारियां आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले फॉर जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन।

0: quality sweets. One of 10 locations to serve Kardine. 2 in Brampton, 1850 Albion Road, Etobicoke. Vidhere Jankari le call karo 416-213-1135. 416-213-1165.
1: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
2: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
1: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
2: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
2: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
3: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
2: 416-509-1509
3: और विजिट insuranceforyou.ca.
4: Qataria Tours and Travels, located near 2883 Derry Road, East Upper Airport and Derry, the intersection upper. To see cheap flight tickets, si pal de vecho, Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar, the route options sono chahide ne. Jan tusi visa services di pal de vecho, puri family vacation upar jaan di socho ne, jithe tuhanu all inclusive vacation packages bhi milde ne. Pahunchna wa ji Qataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection upar. Call kar sakde ho 905-678-1200. 905-678-1200 Qataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection over.
5: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
6: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129. 35 रेजोल्यूशन ड्राइव, ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 905-460-8888, दैट्स 905-460-8888।
5: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
7: आज खुश तो बात हो गया था,
8: वो तो होना ही है जो तक नो वीडियो दा, नो फ्रीजिंग नो बफरिंग वाला 4K अल्ट्रा हाई क्वालिटी आईपीटीवी बॉक्स होवे, ऐ नगदा बनदा ही है।
7: आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है।
8: साडे कोल बॉलीवुड मूवीज ने, टीवी शोज, वेब सीरीज, हिंदी पंजाबी लाइव टीवी चैनल्स एंजॉय करन नो वर्ल्ड्स बेस्ट ते हाईएस्ट क्वालिटी वाला आईपीटीवी बॉक्स है। ते नाले टिल्लो वीडियो कोल गुरबानी रेडियो भी है, ते डिलीवरी बिल्कुल फ्री। होर दस क्या चाहिदा?
9: क्यों कह रहे हो यहां पर?
8: ओ पाजी, सेलिब्रेशन 40 इयर्स इन एंटरटेनमेंट बिजनेस।
10: डाउन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
8: पर टिल्लो वीडियो ते जदों मर्जी आ जाओ, एबनीजर एंड गोर रोड, 905-204-1313, जां tillobideo.com। होर कोई सेवा?
11: ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੇ।
12: ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੇ?
13: ਇੱਕਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੇ।
11: ਰਾਤ ਲੱਗੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਨਾਰੇ
13: ਬਈ, ਮਹਿਫਲਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੇ, ਇੱਕਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੇ ਆਓ, ਤਾਜ਼ਾ ਸਵਾਦਲਾ ਖਾਓ ਤੇ 100% ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ। ਇੱਕਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੇਟਰਿੰਗ ਬਿਗ ਔਰ ਸਮਾਲ ਵਿਦ ਲਾਈਵ ਫੂਡ ਟਰੱਕ, 11 AM to 6 PM, ਆਲ ਡਰਿੰਕਸ 50% ਆਫ। ਇੱਕਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 646-429-4040। ਇੱਕਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ।
14: ਵਿਮਲਾ ਵਿਲੇਜ ਲਵਲੀ ਚ ਪੜਦੀ ਪੀ ਉੱਚ ਜੰਟ ਪੜਦਾ, ਵਿਮਲਾ ਵਿਲੇਜ ਲਵਲੀ ਚ, ਵਿਮਲਾ ਵਿਲੇਜ ਲਵਲੀ ਚ ਪੜਦੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਪਰਾ ਗੋਇਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਤਨੋ ਦੂਰ ਰੇਡੀਓ ਸੁਖੀ ਨਿੱਜਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ।

0: जी हाँ, चांदी के फैंसी सेट, चांदी की बैंगल्स और चांदी की पायल।
1: इतनी बस नहीं, जेंट्स ने चांदी के कड़े, चांदी की चेन, चांदी के ब्रेसलेट,
0: बर्तन और चांदी के किसी भी तरह का सामान लेने के लिए वन एंड ओनली सिल्वर हट।
1: फोर एंड अवनीजर द इंटरसेक्शन पे गुरुद्वारे बाय प्लाजा के बीच सिल्वर हट।
0: 6473393521
1: 6473935 4525 अवनीजर रोड ब्रैम्पटन सिल्वर हट।
2: जिथे चलेगा चलूंगी नाल तेरे वे टिकटा दो ले लई।
3: लेनिया हो या चार बिजनेस लई जाना होवे या फिर घूमन लई इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट हर तरह दे ट्रैवलिंग पर्पस लई कांटेक्ट करो। एयर टिकट्स, इंश्योरेंस, पासपोर्ट एंड वीजा सर्विस ओ वी रीजनेबल प्राइसेस ते स्पेशल ट्रैवल पैकेजेस भी अवेलेबल ने। कटारिया टूर एंड ट्रैवल 2883 डेरी रोड ईस्ट मिसिसागा। कॉल 9056781200।
4: रात आ मैं छड़ दिनी आ, पर जनाब चले किथे हो?
5: मैं चलिया स्काईडम ऑटो ते बॉडी सेंटर, जो सर्टिफाइड कोलिजन शॉप है, जो करनगे मेरी कार दी केयर, बेस्ट सर्विस ते फुल रिपेयर। एक्सीडेंट होने ते इंश्योरेंस कंपनी नाल डील भी कर देने। स्काईडम ग्रुप ऑफ कंपनीज पिछले 25 साल तो तुहाडी सेवा विच।
4: भैया ते कारा दे नाल नाल बसा ते वड्डे ट्रकां दी रिपेयर ते बॉडी वर्क दा भी काम कीता जांदा है। फ्लीट वास्ते स्पेशल पैकेज ने।
5: कॉल करो 905-874-9878।
6: बंबा गया मैं जिथे जावा मुंडे कहंदे बंबा गया।
7: आज
8: हिंदी पंजाबी लाइव टीवी चैनल।

0: Canada Day Study Visa, Express Entry, Canadian Express Entry, Spousal File, Parents PR, Super Visa, Nanny, Work Permit, Farmer, Investor, ya Self-Employed di File, Gal ki, Immigration di har problem da solution lain lai, Community de jaane pehchane, ate tajrbekar Immigration Consultant, Gary Virk nu milo.
1: Koi case refuse ho gaya ya appeal te chala gaya, hove immigration da koi bhi masla, hamesha yaad rakho ikko hi na, ate ikko hi tha. CIC Immigration, hone hi call karo, 416-456-6161.
2: Canada vich rehnde hoye har parivar ko life insurance honi bahut zaruri hai apne parivar di financial security te future planning lai
3: ese lai main apni te wife insurance policy prime insurance te Simraj Sidhu to hi karwai hai
4: jekar tusi vi kise tarah di life insurance mortgage insurance disability insurance critical illness insurance bare soch rahe ho ta sab to vadh coverage te sahi policy tonu Simraj Singh Sidhu hi dwa sakte ne parents lai super visa insurance ya visitor visa insurance di best quote lai hune call karo 416-455-3381 416-457-3381
2: नाले जेकर तुसी कोई insurance policy पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो बिल्कुल free विच policy review करवा के तो हड़े पैसे बचाओंगे हुने ही Simraj Singh Sidhu नू call करो 416-457-3381 416-457-3381
5: दोस्तों देश परदेश प्राइम टाइम रेडियो नू या चलो AM 530 ते 24/7 जिन्ने भी प्रोग्राम आउंदे ने उहनां नू सुनण वास्ते जां देश परदेश नू लाइव देखण वास्ते लॉग इन करो साडी वेबसाइट नू www.deshpardeshradio.com या www.deshpardeshtv.com लाइव सुनना चाहुंदे लाइव ते क्लिक कर लो जे वाच करना चाहुंदे हो तां ओ ते क्लिक करो जां फिर अपने IPTV बॉक्स दे उत्ते पंजाबी सेक्शन क्लिक करो ओहदे उत्ते जाके देश परदेश टीवी नू कनेक्ट करो उत्थे तुसी सुन भी सकदे हो वेख भी सकदे हो 24/7

0: FM 530 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ।
1: ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 905-564-6444। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ, ਚਲੋ AM 530 ਤੋਂ।
2: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है, अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग ले।
3: इसे लिए मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस दे सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है।
4: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो तो सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने। पेरेंट्स लिए सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लिए हुणे कॉल करो 416-453-3381 ते 4-6-4-5-7-3-3-8-1 ते।
2: नाले जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो। बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाओगे। हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-456-3381 416-457-3381।

0: किस्मत ने उनका इम्तिहान यहाँ तक ही नहीं लिया, 11 साल बाद उनकी बेटी की भी मौत हो जाती है जिससे वो पूरे टूट जाते हैं, और उसके ही 2 साल बाद 2011 में उनकी भी ब्रेन हेमरेज से मौत हो जाती है। और ये जगजीत सिंह की कहानी आपको सिखाती है, उन्होंने शोहरत और दौलत तो बहुत कमाई लेकिन जिंदगी ने उन्हें बार बार गम ही दिए। जगजीत सिंह
1: सो मैनू बिल्कुल नहीं सी पता यार इहदे बारे, फिर मैं वीडियो देखी मैं कि यार इट्स किन्नी ट्रैजिक गल है। सो प्रोग्राम है पंजाबी ना, ते नंबर है अपना 905-673-3337, ते थोड़े लई जगजीत जी दा जिहड़ा वीर उन्होंने रिक्वेस्ट कीता सी ओही लाउणे आ। मास्टर ज्वेलर्स नूं याद रखो, ज्वेलरी दी खरीदारी करनी है एयरपोर्ट रोड ते मेफील्ड दे कोर्नर ते 6231 है मेफील्ड रोड, मास्टर ज्वेलर्स ते जाओ, टॉप टॉप टॉप दी सोने दी खरीदारी एयरपोर्ट रोड ते मेफील्ड दे बिल्कुल कोर्नर ते। उस तो इलावा मिस्टर सिंह पीजे दी बैजा बैजा ते बल्ले बल्ले आ। मिस्टर सिंह पीजा डील तुसी देखो, सो मिस्टर सिंह पीजे ते मैगा डील है, 2 लार्ज पीजे, 4 टॉपिंग ईच, 4 फ्री डिप, 2 लीटर कोक फ्री, क्या बात है, सिर्फ $40 च। नंबर है 905-500-4000, 9055004000, 905-500-4000। मिस्टर सिंह पीजे ते तुसी एक बार गेड़ा जरूर जरूर जरूर लगाओ। आ जाओ फिर सुन दिया।